0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा आपने इतना खूबसूरत लहजा कहाँ से सीखा है?
1: बाबा जी, ये लहजा मैंने इदारा मआरिफुल कुरान में अपने मोहतरम असातिज़ाए कराम से सीखा है।
0: सुभान अल्लाह, बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे जिंदगी में आपने कुरान मजीद को लहजे के साथ साथ समझ के भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ यही वो किताब है जिसमें रुश्द हिदायत का सामान है।
1: इंशाल्लाह बाबा जान, मैं कुरान मजीद को लहजे के साथ साथ समझ के भी पढ़ूंगा।
0: शाबाश बेटा शाबाश।